तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद, सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा। माणे में माणे तू तने

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो

अपनी कृपा करे चम कमल नल खड़ा दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

के मटे वसूरे गुरनारायण दा गुरु गुर सच्चा ते दिनहार गुर टुटे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

झूठ मन लो, लेकिन गुरु नानक पातशाह दे इस कथन नू किवें झूठा करोगे। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कढ वही। उथे तेरी वही कढ़ी जाएगी, तेरे लेखे जो तू लिखे हैं तू आप लिखे, किसे होर ने नहीं लिखे। इस वास्ते खुड़ मनुच्छा जीवन है, नाम जप

0: एडे कीमती श्वास पाए जिन्हां नाल तैं जपना सी श्री वाहिगुरु। उस मालक नूं ही विसार बैठा, इत्थे दी तां सोझी रही, इत्थे तां चंगा घर बना लिया, लेकिन अगा जिस घर विच जा के रहना सी उहदा चेता ही कोई नहीं। साध संगत बोलो श्री जो कर छड गवावना, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नहीं। ओ अगे दी चिंता तेनू विसर गई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बार आके बैठे, की वेख्या एक बिरद बाबा जो अपने बच्चियां नू बड़ी ताड़ना कर रहे, ए कम करो ओ कम करो, जे कम नहीं करोगे तो भुखे मर जाओगे। ते इस बिरद बाबे ते धन गुरु नानक पातशाह दी नजर पै गई। ते आख्या जा मर्दानिया ओ बाबे नू बिरद नू इत्थे साडे कोल लै के आ। मर्दाना गया आख्या बाबा तेनू परमेश्वर दे रूप धन गुरु नानक पातशाह जो इस वक्त जगत नू तार रहे हैं आज इस नगर दे बार आए हैं और उना दी नजर तेरे उत्ते पै गई है। उना ने तेनू अपने पास बुलाया। ते जदों ओ बिरद गया ते पातशाह धन गुरु नानक देव कहन लगे आ बिरद बाबा हुण तां घर दे जंजाल छड्ड दे, क्योंकि बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, हुण तां थोड़ी रह गई है, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते आ इस बूटे नू रोड़ के लै जा। साध संगत बोलो श्री हुण परमेश्वर दा नाम जप लै, वेला है। जे नाम जप लवे तां असी तेनू मुक्त कर देंगे। ओ बिरद बाबा कहन लगा पातशाह आ अपनी मुक्ति तुसी अपने कोल रखो, मैं मुक्त होना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि जे मैं ना होवां तां घर दे आ कम कार कौन करेगा, धंधे कौन चलाएगा, आ मेरे पुत्रां नूं तां कोई सोझी नहीं। साहब जी कहन लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी, असी तां हुण बचन कर दिता है तेनू मुक्त करन दा, लेकिन हुण जदों तू कवेंगा ना मुक्त कर तां करांगे। साध संगत बोलो श्री साहब जी चले गए। कुछ समा पा के मुड़ उस नगर विच्चों लंघे, उस बिरद बाबे दे परिवार ने गुरु नानक पातशाह नूं पछाण लिया। बिरद बाबे दे लड़के धन गुरु नानक पातशाह नूं अपने घर लियाए, आख्या महाराज तुसी ओही हो जो साडे आ बजुर्ग पिता नूं उपदेश दिता सी कि नाम जप लै मैं तेनू मुक्त कर देंगा। पातशाह कहन लगे हां किथे है ओ, अंतर जामी सब कुछ जान दे। आख्या किथे है ओ, तां परिवार दियां ने आख्या जी ओ तां कुछ साल हो गए हैं, ओ तां गुजर गए हैं। साहब जी कहन लगे अच्छा अंतर ध्यान हो के जां तकिया तां गुरु नानक पातशाह ने के ओ बिरद बाबा इन्हां दे ही घर बलद दी जून पा के, बैल दी जून पा के खड़ोता है। साध संगत बोलो श्री साहब जी ने मर्दाने नू आख्या जा ओ सामने बैल खड़ोते ना उदे कान विच पिछले जन्म दी सोझी पा, आख तेनू गुरु नानक पातशाह आए हन मुक्त करन वास्ते, जे तू आखे तां कर देईए। उन्हें सिर हिलाया जिवें कहिंदा होवे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि 500 दा तां जे मैं मर गया 500 दा तां ए नुकसान होवेगा परिवार नूं, ते 500 दा नवां बैल लियाना पवेगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। पातशाह से कहन लगे चल मर्दानिया अजे इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह मुड उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच कार दे बार खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया पे। साहब जी कहन लगे, आ मर्दानिया आ जेड़ा आ कूकर बैठा है ना कुत्ता, आ पता ही कौन है, आ पिछले जन्म विच ओही बिरद बाबा है। पातशाह इस हालत विच आख्या, हां हुण भी जाके पुछ ले जे मुक्त कर दईए इस नूं। मर्दाने ने पिछले जन्म दी सोजी दे के उसदे कन विच याद कराया, इवें भोकिया जिवें कहिंदा होवे, ना महाराज मैं अजे भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे जिहड़े लड़के हन वो ऐसे अणभोल हन, जो सौंदे हन उन्हां दी नींद ही नहीं खुलदी, ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हाँ पैरे ते कि कोई घर दा धन ना लुट के लै जावे। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी हसे आख्या, चल मर्दानिया अजे होर जूनियां पाल। कुछ समय बाद जो ये मरन लगा, ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच तन दबिया सी, ते सप दी जूनी पा के उस तन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नूं पंगूड़े विच पा गई, ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया, ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया, रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया, लठा नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नू तारदे होए कुछ वरिया बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे, तां की वेख्या, ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप धार के गंदी नाली विच पई होई है। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी ने आख्या, मर्दानिया आ जिहड़ा कीड़ा नाली विच पे है ना, इसनू बाहर कट। ओ पातशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नू बाहर कढ़िया, साहब जी ने उत्ते जल पुआया, अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या, क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दीए जां हुण भी जोनियां भोगणियां ने? साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोजी जो दे दित्ती सी, ते फिर आवाज आई, पातशाह मैनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनियां पाईयां, आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे दे के धन कट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया, इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी क्यों देख ना पानी विच, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जी हो हुण मुक्ति देओ। तां साहब जी ने जल दे छट्टे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नु नहीं तारे, आ कीड़े ऊपर भी जल दे छट्टे मार के आख्या, जप श्री वाहिगुरु, तुसी भी जपो सारे श्री
1: वाहिगुरु।
0: सतनाम श्री वाहिगुरु दे छट्टे मार के जदों उस कीड़े नु साहब जी दी नजर पई, ओ कीड़े दी जून छड के बिरद बाबा दिव मूरत धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोग पिंड दे वासी इकट्ठे हो के आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी उस रूप विचों, परिवार दियां नूं आख्या, आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, गुरु नानक पातशाह निरंकार दा रूप है, इन्हां दे चरणों विच पाओ तां तुहाडी कल्याणता, इन्हां दा बचन मनोगे तुहानूं सारे सुख प्राप्त होणगे। इस वास्ते साहब धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, नानक आखे रे मन सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ वही। इन्हां स्वासां दे नाल दिहाड़ी तेनू 24,000 स्वास मिलते हैं, उन्हों स्वासा जप जप के सफल कर दे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेर वाले आप क्या करते सन, दिहाड़ी एक पाठ सुखमनी साहब का कर लै तेरे दिन दे लिते हुए 24,000 स्वास सफल हो जाएंगे। साथ संगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: फिर आप बड़े प्यार नल क्या करते सन, जे कोई छी माला पहली पौड़ी दियां रोज कर लवे ना, मेरा ते गुरु नानक उहदा जामन होया, मैं नरकां विच नहीं जान देंगा। प्यारी साथ संगत जीओ, आ मनुच्छा जीवन जो मिलिया ना, आ जिस तरह इत्थे अपना घर बणाया, अगां भी घर दी सोचो, जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। उत्थे तां साहब जी कहिंदे ने कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। उत्थे जिहड़े कूड़ियार हन उन्हां नूं थां नहीं मिलनी, उत्थे तां सचियारां नूं थां मिलेगी। भावें कोई भी होवे, किसे जाति दा होवे, किसे मजहब दा होवे, किसे धर्म दा होवे, जे उसनूं परमात्मा नूं याद कीता, गुरु नानक पातशाह दी आराधना कीती है, नाम जपिया, तां कबीर जी निर्णय करदे हन गुरबाणी विच के कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, हुण वेला ही मेरी एक सिख्या लै लै, दुनियावी सिख्या तां लैंदा है ना, एक मेरी सिख्या भी लै लै, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इसते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री जी। और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग गया। आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

जी एक बहुत कमाल दी गल कर दी। सप डंग मार दे कहने ने लोग सप तो बचने की कोशिश करती कि सप दा डंगया होया मनुख बच नहीं सकता, पर फरमांदे नहीं

तेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हां ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। सात संगत बोलो श्री तुरदे हो पिछली प्यारी अदा।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आता। आप पुठी प्यारी तुरते हुए अद्धे रस्ते

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर्वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित इंद्रान शाहू शाहन गणिजय फिर भवन में ही सुनारा सुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत छतपुर आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी आवरण सूजय दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आधारी नानक दास संत पाछा परियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नौ निज पाइया सतगुर हुई दयाल

अपने पद करें प्रतपाला, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई। वाहे जी का खालसा।

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाणा नूं ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नूं हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलुए दियां गल्लां होण लगियां। नलुए तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नूं जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नूं चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठान सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना, ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया, बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर, सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथां नू लिताड़ दे सिंगा दे कोले अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एओ टकरे।

0: सरदार हरि सिंह ने फट नू कुट के बन लिया। कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई।
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी। अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया। जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरि सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया। मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो। खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया। कंध मुकम्मल तैयार हो गई। साहिबजादे असह ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए। धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

ये जो शब्द आप सर्वन कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुक्राने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख छमे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन केश दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा कोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।